0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: ओके।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सिर्फ चलना नहीं,

0: भी 50-60 अच्छा 100 भी समझो, ज्यादा में ज्यादा इतने नहीं है लेकिन समझ लो तो बाप दादा तो सभी सेंटर्स के बच्चों को लास्ट को भी अपना प्यारा कह के चलाया था और प्यार की निशानी है रोज बाप दादा याद प्यार क्या देता मीठे मीठे जानता है खट्टे भी है लेकिन मीठे खट्टे कभी याद में कहा है उन्हों को भी लाडले कहते नसरब कहते हैं लेकिन मेरा बच्चा मेरे भाव से चलाता है क्योंकि बता दिया कि ड्रामा में माला में सब एक नंबर नहीं है ये रिजल्ट है संस्कार बिना बिना होते है होना है नहीं तो सब राजा बन जाए प्रजा कौन बनेगा राज किस पर करेंगे अच्छी प्रजा भी तो चाहिए रॉयल प्रजा राजधानी है ऐसे हर एक अपने को जी करे परिवार में किसी भी बात में संस्कार खराब है लेकिन मेरा संस्कार क्या अगर खराब को देख मेरा संस्कार भी खराब हो गया तो मैं तो खराब का हो गया जो अच्छे को भी बदल लेता है।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: मनोबल को बढ़ाओ, मनोबल की सेवा बेहद की सेवा जो आप वाणी या समान संयोग से करते हो, मनोबल की बेहद की सेवा एक समय की वाह थोड़े समय की इस सेवा से बहुत बहुत ज्यादा। अगर आपने बेहद की वृत्ति से मनोबल द्वारा विश्व के गोले के ऊपर स्थित ऊंचा पाप के साथ परम धाम के स्थिति में स्थित हो, थोड़े समय में भी सेवा की तो आपको उसकी

咁事话，咦，问生，话问好问件事话，你搞阿边子？阿边死个路？Give Fala Swarov.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: Dead Butcha.
1: Mira.
0: pena. Otasi artat. Maya kita si bernevale. To ap maya cito. Maya kita sne.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सबने अपना अकाउंट रखा, जिन्होंने एक्यूरेट अपना अकाउंट रखा है, नियम परमान काम चलाओ नहीं, यथारथ रूप से जैसा भी है, लेकिन अकाउंट अपना पूरा रखा है, सच्चा सच्चा अकाउंट चलाओ नहीं। वो हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, बड़ा हाथ उठाओ, जिन्होंने रखा है, लिखा है नहीं, रखा है। दोनों ने रखा है, अच्छा पीछे वाले उठो, जिन्होंने रखा है वो उठो, खड़े हो जाओ, जिन्होंने रखा है आगे वाले भी खड़े हो, पहली लाइन बैठे रहो। हम ये अच्छा अच्छा यहाँ टीवी रखी है, अच्छा अच्छा यहाँ वाले कोई नहीं, यहाँ वालों ने नहीं रखा है, अच्छा डबल फॉरेनर्स, जिन्होंने रखा है वो उठो, जिन्होंने रखा है, अच्छा टीचर्स ने नहीं रखा है। अभी सोच सोच के उठ रहे हैं, अच्छा और ये पहली लाइन ने रखा है, हाथ उठाओ पहली लाइन वाले, हाथ उठाओ, अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा मुबारक को बैठ जाओ, अच्छा जिन्होंने नहीं रखा है उन्हों को हाथ नहीं उठवाते, लेकिन अच्छा नहीं लगेगा ना उठाना, लेकिन अकाउंट रखने से जिन्होंने रखा है बाप दादा के पास तो स्पष्ट हो ही जाता है, लेकिन जिन्होंने सच्चा सच्चा कईयों ने थोड़ा हिसाब से नहीं, जैसे

फिर भी

जरूरी है श्रीमद न मानने से।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: पैसे नहीं देखना, देख के बाबा मदद करता है या नहीं, इम्तिहान नहीं लेना। बंधा हुआ है बाप, आप भी बंधे हुए हो, बाप भी बंधा हुआ है। तो इस गिफ्ट को रोज बार बार देखना, कोई बढ़िया गिफ्ट होती है उसको बार बार देखती है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो रोज अमृत वेले देखना और कर्म करते कर्म योगी जीवन में भी बीच बीच में रिवाइज करना। अच्छा गिफ्ट ले, गिफ्ट दी, अच्छा।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सभी उठा

his.

خوش مزاج چهره ایسه

कुछ रहता चेहरा अच्छा लगेगा। तो आज से सभी बच्चे सिर्फ सो नहीं, सभी बच्चे अपने दिल में प्रॉमिस करो, सदा खुश रहेंगे और सभी को खुश करेंगे। क्योंकि खुशी जैसी कोई खुराक नहीं, बाप दादा ने खुशी की कमाल सुनाई, जो एक खुशी

し。

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

इस मोटे रूप से

Eskilistö. Apos me. Say it now.

0: Son Carla Coffee. Srishta Panadenga. Funny me.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बहुत बड़ा ग्रुप हो गया है एडवांस पार्टी। अगर नाम निकालो तो बहुत है। वतन में आज
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आप अपने विशेषताओं को जानते हो? जानते हो? हर एक अपने विशेषता को जानते हो? जानते हैं? अगर हाँ तो एक हाथ उठाओ, दो हाथ नहीं एक। अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, उस विशेषताओं को क्या करते हो? जानते हो? बहुत अच्छा। मानते हो? बहुत अच्छा। लेकिन उन विशेषताओं को क्या करते हो? क्या करते हो? क्या करते हो? सेवा में लगे।

विशेषताएं अगर नेगेटिव रूप में यूज किया तो अपमान का रूप बन जाता, क्योंकि ज्ञान में आने के बाद ब्राह्मण जीवन में आने के बाद पाप द्वारा विशेषताएं बहुत प्राप्त होती है, क्योंकि पाप का बनने से सोला माना संपूर्ण

شش.

watch this scene.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: कई बार कहते हैं बाबा आज वो चैन बाबा भूल गए, बाप दादा सुन के कितना आश्चर्य लगता होगा, भूल गए तेसठ जन्म भूले, अभी भी भूल गए एक जन्म, और छोटा सा जन्म इक्कीस फुल जन्म भूल गए, अभी भी भूलना रहा हुए। इसीलिए अभी माया की चतुराई को समझ जाओ, माया को कभी कभी खातरी भी कर देते, कहते हैं हम समय पर हो जाएंगे, अभी तो टाइम पड़ा है न थोड़ा, अभी टॉयलेट का बोर्ड नहीं लगा है ना, हम हो जाएंगे। और माया भी सहारा देख करके खातरी चाय पानी पीती रहती, माया के फॉलो फादर की बजाय फॉलो माया कर लेते। पुरुषार्थ ये ना संपूर्ण थोड़े बने हैं, ये तो होता ही है ना, ये माया कोई फॉलोअर बनना। तो अभी बाप दादा कभी भी बाप दादा चक्कर लगाने आते
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

sera tard. Soyambi santushtare. Or dusre ko bhi santusht kare. Bina bina sanskar ko jante hue bhi santusht rehna aur santusht karna. Isse dhuaon ka khata jama hota hai. Agar kisi bhi karan se संतुष्ट करने में कमी रह जाती है तो पुण्य के खाते में जमा नहीं होता. संतुष्टता पुण्य की चाबी है, चाहे रहना चाहे करना. और तीसरा है सेवा में भी सदा निस्वार्थ मैंपन नहीं, मैंने किया चाहिए. ये मैं और मेरापन जहां सेवा में आ जाता है

Unbelievable. Yeah.

मास्टर सर्वशक्तिवान हो, कमजोर संस्कार शक्तिशाली नहीं है। मुझे मास्टर सर्वशक्तिवान के ऊपर कमजोर संस्कार

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।
2: देखो, निश्चय का प्रत्यक्ष परवान है, रूहानी नशा
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Salik.

0: कैसे हो?
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: कल से नहीं, आज से, अभी से, सारे दिन में दोनों भाव से प्यार, तो कभी अपने को निराकार भाव समा निराकारी स्थिति में अभ्यास करो। फॉलो फादर और कभी फरिश्ता बनकर साकार रूप भ्रमण नहीं, भ्रमण तो हो ही, लेकिन फरिश्ता रूप बन कर्म भले करो, लेकिन कर्म करते भी फरिश्ता स्थिति में रहो, तो कर्म का बोझ प्रभाव नहीं डालेंगे। ब्रह्मा बाप से प्यार है, तो ब्रह्मा बाप ने कर्म सब किया, निमित्त बना, लेकिन कितना बोझ था ब्रह्मा बाप के ऊपर। आप कोई के ऊपर इतना बोझ नहीं है, है कोई ब्रह्मा बाप से ज्यादा किसके ऊपर बोझ है, जिम्मेवारी है, वो हाथ उठाओ। कोई नहीं उठाता, कोई नहीं उठाता। तो ब्रह्मा बाप ने इतनी जिम्मेवारी निभाते हुए कार्य में कैसे रहा, कर्म में भी फरिश्ता रूप रहा ना। तो आपका भी ब्रह्मा बाप से प्यार है, तो कभी फरिश्ता रूप में रहो, कभी निराकार स्थिति में रहो। ये प्रैक्टिस ब्रह्मा बाबा कह के ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बन जाओ और शिव निराकार बाप को याद कर निराकारी स्थिति में स्थित हो जाओ। ये कर सकते हो, कर सकते हो कि मुश्किल है, जो कर सकते हैं बीच बीच में, बीच बीच में ऐसे करें जो लगातार हो जाए। ये अपने कर्म के हिसाब से जो आपकी दिनचर्या है उसके हिसाब से फिक्स करो। कम से कम सारे दिन में 12 वारी फरिश्ता बनो, 12 वारी निराकार स्थिति में स्थित रहो। ये कर सकते हो, हाथ उठाओ, कर सकते हो, मुश्किल नहीं है ना, नहीं, सहज है ना, सहज है, सहज में हाथ उठाओ, सहज है। अच्छा, करना है, करना है, ये पक्का करो, फिर तो जो लक्ष्य रखा है ना इस सीजन के अंत तक परिवर्तन हो सकता है। अगर ये ड्रिल 24 टाइम करेंगे तो लगातार हो जाएगा, ठीक है ना। हो सकता है, हो सकता है, हाथ उठाओ, हो सकता है, हो सकता है। फिर तो बाप दादा की तरफ से पदम आप सबका भी यही लक्ष्य है ना कि दुखियों को संदेश दें, मुक्त करें। उन्हों को मुक्त करने के बिना आप मुक्ति में जा नहीं सकते, तो इन्हों को मुक्त करो। क्योंकि पाप आया है ना तो सारे विश्व के बच्चों को वर्षा तो देंगे ना, आपको जीवन मुक्ति का वर्षा देंगे, लेकिन सभी बच्चे तो है ना, उनको भी वर्षा तो देना है ना। उन्हों का वर्षा है मुक्ति, आपका वर्षा है जीवन मुक्ति। जब तक मुक्ति नहीं देंगे तो आप भी जा नहीं सकते। इसके लिए ये ड्रिल करो, 24 वाली, 24 घंटे है, रात और दिन के 24 घंटे, और 24 बार करना। नींद, नींद के टाइम नींद भले करो, बाप दादा ये नहीं कहते कि नींद नहीं करो, नींद करो, लेकिन दिन में भला।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आजकल परमात्मा भी सैंपल देखने चाहते सुनने नहीं चाहते। आपस में भी क्या कहते हो, कौन बना है, रूप में कौन मूरत देखने चाहते। तो कर्म से विशेष सहयोग, गुरों का दान देने की आवश्यकता है। सुनने कोई नहीं चाहता, देखने चाहता। शक्तियों का वाइब्रेशन, शक्तियों तो संयोग वह अज्ञानी आत्माओं को गुणता।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: दिल वाला मंदिर में तो देखा है नक्षत्र आपने, बहुत अच्छा। जब आपके चरचित्र रैम दिल कोई भी चित्र के आगे जाती है, क्या मांगते दया करो, कृपा करो, रैम करो, मर्सी मर्सी, तो सदा पहले अपने ऊपर रैम करो, फिर ब्रह्मांड परिवार के ऊपर रैम करो। अगर कोई परवस है संस्कार के वश है, कमजोर है, बेसमझ हो जाता है उस समय, तो क्रोध नहीं कर। क्रोध की रिपोर्ट ज्यादा जैसे परिवार में होता है ना, बड़े बच्चों से प्यार कम हो जाता है और पोतरे दोतरों से प्यार ज्यादा होता है, तो क्रोध पाप है और रोब और नशा उल्टा नशा। नशे भी भिन्न भिन्न होते हैं, नशा छुट्टी का नशा, सेवा के कोई विशेष कर्तव्य का नशा, ये रोब होता है। दयालु बनो, कृपालु बनो। और नए वर्ष में एक दो का मुख मीठा भी करते हैं, बधाई देंगे तो मुख मीठा भी कराते हैं ना, तो सारा वर्ष
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: I am.

姐姐，我姐妹，阿拉被你们没抱得的，一头大爷，一头真大爷，真里头什么真的，把这大光线。

0: आप अलग मेरे मन में आके ड्रॉप कर करते हो, ये समझदारी है, समझदारी।
1: Thank you.

tutto attenzione. Sub-sub.

0: agar समझ लिया, सोच लिया तुम बाप दादा पढ़ाई पूरी कर देते। जब स्टूडेंट बन चुके हैं तो फिर तुम पढ़ाई बने, फिर तो समाप्त कर दे। लेकिन इस अलग पीले पन को अच्छी तरह से
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अब दादा सभी बच्चों से यही चाहते समान बनने का दिखाओ, सदा संकल्प में समारोह मनाओ, क्योंकि व्यर्थ समृद्ध बनने नहीं देंगे। और जब निमित्त बने हुए बच्चे सदा समृद्ध नहीं बने, तो विश्व की आत्माओं को समृद्धि कैसे दिलाए? सर्व आत्माएं शक्तियों से बिल्कुल खाली हो, शक्तियों के भिखारी बन चुके, ऐसे भिखारी आत्माओं को ये समृद्ध

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: हाथ बहुत अच्छा उठाते हो, बाप दादा खुश हो जाता। कमाल है हाथ उठाने की, खुश करना तो आता है बच्चों को, ये तो क्यों कब बाप दादा देखते हैं। सोचो जो आप कोटो में कोई में कोई निमित्त बने हो, अभी इन बच्चों के समय और कौन करेगा, आपको ही तो करना है ना। तो बाप दादा का आप बच्चों में उम्मीद है और आएंगे ना, वो तो आपकी अवस्था देख करके ठीक हो जाएंगे, उन्हों को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आप बन जाओ बस। क्योंकि आप सभी ने जन्म लेते ही बाप से वायदा किया है, साथ रहेंगे, साथी बनेंगे और साथ चलेंगे और ब्रह्मा बाप के साथ राज में आएंगे। क्या है ना वायदा, ये जब साथ रहेंगे साथ चलेंगे तो साथ में सेवा के साथी भी तो ना मदद मिल जाएंगे। पढ़ना तो पड़ेगा आपको, अभी सिर्फ जल्दी बन जाओ। आप सोचते हो ना हम ही कल पहले भी थे, अभी भी है और हर बनना ही है, ये तो पक्का है ना। कि दो साल बनेंगे तीसरे साल जाएंगे, ऐसे तो नहीं होंगे। तो सदा याद रखो हम ही निमित्त है, हम ही कोटों में कोई कोई में कोई है। कोटों में कोई तो आएंगे लेकिन कोई पे कोई।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: फाजा की सेवा भले करो, धूमधाम से करो, लेकिन भूलता नहीं है, सुना हुआ भूल जाता।

0: सिख अधिकारी नहीं बन सकते, तो अनुभव संबंध में लाने वाले।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा ने देखा है कि एक संस्कार या नेचर को नेचर तोड़े के अपने अपने है, लेकिन सर्व का सनई और सर्व बातों में संबंध में सफल मनसा में विजयी और वाणी में मधुरता तब आ सकती है जब इसी नेचर अलग पहले नेचर नहीं अलग पहला बना अलग चीज है इसी नेचर उसको कहा जाता है जैसा समय जैसा व्यक्ति जैसा सर्कमस्टेंस उसको परखते हुए अपने को इसी कर देवे इसी अर्थात मिलनसार टाइट नेचर बहुत तो अच्छा ऑफिशियल नहीं ऑफिशियल रहना अच्छा है लेकिन टू मच नहीं और समय पर जब समय ऐसा है उस समय अगर कोई ऑफिशियल बन जाता है तो वो कुरान के बजाय उनकी विशेषता नहीं उस समय लगती अपने को मोल्ड कर सके मिलनसार हो सके छोटा हो बड़ा हो बड़े से बड़ेपन में चल सके छोटे से छोटेपन में चल सके साथियों में साथी बन के चल सके परों से रिगार्ड से चल सके बोल्ड कर सके इसी शरीर भी इसी रखते है ना तो बोल जाते हैं जहाँ भी बोलने चल और टाइट होगा तो बोल नहीं सके अल्लाह बेला भी नहीं इसी है तो चाहता इसी हो जाए अल्लाह बेला हो जाए नहीं माता देने कहा ना इसी हो जाओ इसलिए इसी होगे ऐसे नहीं करना इसी नेचर अर्थात जैसा समय वैसा अपना स्वरूप बना।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो
2: सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कभी भी दिल छोटी नहीं करना, बड़ी दिल बड़ा बाबा, छोटा बाबा है क्या, बड़े दिल बड़ा बाबा है ना, तो बच्चों की दिल सदा बड़ी। बाप दादा का स्लोगन है, बड़ी दिल सच्ची दिल साफ दिल हर मुराद हासिल। जो भी किचरा आवे ना, किचरे की दुनिया है ना, तो कभी वायुमंडल में किचरा उड़ के आ जाता है, लेकिन किचरा अपने पास नहीं रखो। जैसे स्थूल कमरे में सोते हो और किचरा हो जाए तो क्या होता है, सफाई नहीं करो, मच्छर होते हैं, बीमारियां होती है। तो ये भी अगर मन में कोई भी बात रख ली, निकाला नहीं, तो वो वृद्धि को पाती रहती। बस बाबा, मेरा बाबा हाजिर बाबा बंधा हुआ है। बच्चा, बाप का बच्चा, भगवान का बच्चा याद करे मेरा बाबा, और बाबा हाजिर नहीं हो, ये हो नहीं सकता। आपके पास बाप को बांधने की रस्सी है,
0: सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: जैसे बाप दादा ने पहले कहा है कि कैसे भी करके मुझे अपने साथ परम धाम में ले जाना है, चाहे मार से चाहे प्यार से ले जाना है। अज्ञानियों को मार से और आप बच्चों को प्यार से, ऐसे ही बाप दादा भी कहते हैं अभी भी, कैसे भी करके दुनिया के आगे महान आत्माओं को फरिश्ते
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा, सभी बच्चों से खुश है, लेकिन रोज अपने को रात्रि को बाप दादा का याद प्यार देना और मुबारक देना। बाप दादा की मुबारक रोज अपने को देना बाप दादा देता है, और आप अपने आप को देना। बाप दादा छोड़ते नहीं है, चाहे इंडिया है चाहे विदेश। जैसे अमृत वेले चक्कर लगाते हैं,

0: आपको मुबारक देगी।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: फिकर बादशाह बन गए। एक ही शब्द का अंतर तेरा मेरा, ते और मैं। इस शब्द के
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

लेकिन नहीं, लेकिन फकोड़े। जान

एक जन्म के लिए नहीं, लेकिन अनेक जन्म।

0: conozco. Tira, Cardi. Mira. Ortira. Mi ik matraca y faraca. Me orte. जीवन कितने खुश बन जाती।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कई बच्चे बड़े चतुर हैं, चतुराई सुनाओ। क्या कहते हैं, ऐसा काम को चलाना था ना, इसीलिए काम चला लिया। बाकी मैं समझती हूँ, समझता हूँ करना नहीं चाहिए, लेकिन करना पड़ा तो कर लिया। लेकिन जे कर लिया तो कर्म का फल तो मिलेगा ना। तो चतुराई नहीं करना, पाप को भी बहुत री जाते हैं, गलती करते हैं ना। फिर बाप दादा को ऐसी ऐसी बातें, बाबा आप तो रहम दिलो ना, आप तो किमिया के सागर हो ना, बाप को भी याद कराती है तो आप कौन हो। आपने कहा है ना, मेरे को सुना के खत्म कर दो। सुस्ता से सुना के कदम एक अखियर पका करते हो, सुना तो देते हो, लेकिन पहले दृढ़ संकल्प से स्व को परिवर्तन करके फिर सुनाओ। रिजाते बहुत है। आपने कहा है ना, बाप को भी याद दिलाते हैं। आपने ये कहा है ना, आपने ये कहा है ना, बड़े चतुराई करते। अभी चतुराई नहीं करना, हिम्मत रखना, करना ही है के नहीं करना।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

Mitte.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: Mann Gemause. Gianni mit Baue. Wannermann. Bau. Automatically agent. Du Ciccaro.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सर्व खजानों के साथ जो विशेष खजाना है वो है संगम युग के समय का खजाना, जिस आत्मा को समय के खजाने का महत्व है वो सदा अनेक प्राप्तियों के मालिक बन जाता, क्योंकि संगम युग का समय बहुत है छोटा, लेकिन समय से प्राप्तियां ज्यादा, सबसे ज्यादा संगम युग के श्रेष्ठ से श्रेष्ठ प्राप्ति है स्वयं भगवान पाप रूप में, शिक्षक रूप में, सतगुरु के रूप में प्राप्त होता मिला है। संगम युग में छोटे से जन्म में 21 जन्म की प्राप्ति, जिसमें तन मन धन जन सर्व प्राप्ति और गारंटी है। 21 जन्म फुल आते नहीं, बोना नहीं, लेकिन फुल 21 जन्म की गारंटी तो सबसे ज्यादा जो महत्व है वो है संगम योग का। एक एक सेकंड अनेक वर्षों के समान, इसलिए बाप दादा सदा समय की स्मृति दिला रहे। कई बच्चे समझते हैं कि एक दो मिनट अगर और कुछ सोच लिया तो दो मिनट ही तो है, लेकिन जितना समय का महत्व है उस अनुसार दो मिनट नहीं, दो मास भी नहीं, दो वर्ष के समान इतना महत्व है संगम के समय का। सर्व शक्तियों की, सर्व गुणों की, परमात्म प्यार की, ब्रह्मांड परिवार के प्यार की और कलम पहले वाले ईश्वरी हक की सर्व प्राप्ति इस छोटे से युग में और कोई भी युग में ये सर्व प्राप्ति नहीं। राजभाग होगा, आप सबका राज होगा, सुख शांति सब होगा, लेकिन परमात्म मिलन का, अति इंद्रिय सुख का
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा का ये संकल्प है कि इस शिवरात्रि पर या एक सप्ताह पहले या एक सप्ताह पीछे दिनों में अपन ने परिचित अपने मोहल्ले वाले अपने दफ्तर के कार्य करने वाले साथी इन्हों को संदेश जरूर दो कि अगर बाप से वर्षा लेना है तो ले लो, ये संदेश जरूर दे दो। आपके मोहल्ले में कोई ऐसा नहीं रहे जो कहे कि हमको अभी लास्ट में क्यों संदेश दिया, थोड़ा पहले तो देते तो आप भी कुछ बना तो लेते, नहीं तो लास्ट में तो सिर्फ आओ प्रभु कहते रहेंगे। आप आए, हमने नहीं पहचाना, वो लेना देते रहे। इस शिवरात्रि पर किसी भी विधि से ऐसा प्रोग्राम आपस में बनाओ जो पहचान वालों को संदेश मिल जाए, फिर राह उन्हों की तकदीर। लेकिन आपने अपना कार्य पूरा किया तो हर एक को ऐसे किसी भी रूप में उन्हों को संदेश पहुंच जाए। फिर जैसी नेचर, जैसा स्वभाव, उसी परमान अपने अपने तरीके से संदेश जरूर दो। बड़ा दिन है, खुशखबरी आपको सुनाते तो ये ओलेना निकल जाए। अभी भी प्रोग्राम करते हो तो क्या कहते हैं, ऐसे भी कहती है अभी भी कि हमको तो अभी पता पड़ा आपने पहले क्यों नहीं किया। इसलिए बच्चों का, बाप दादा का जन्मदिन है, जो पुराने है अपना जन्मदिन कौन सा मनाते, शिवरात्रि मनाते है ना। तो इतनों के जन्मदिन पर ये संदेश देने की मिठाई बांटो, ठीक है? बांटेंगे, हाथ उठाओ, कोई भी वंचित नहीं रहे। किसी भी विधि से फंक्शन करो या पोस्ट द्वारा भेजो, लेकिन कोई रहे नहीं, किसी भी साधन से उनको संदेश जरूर पहुंचा, वो आप आपस में रहकर तीन चार तरीके बनाओ, फर्क वाले भी अपने सभी कनेक्शन वालों को शिवरात्रि के महत्व का संदेश जरूर दे। पसंद है आज
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: याद रखना, अपने आप ही अपना चार्ट रखना, और बाप दादा ने पहले ही सुना है कि हर रात्रि को बाप दादा को अपने सारे दिन का चार सुनाने के बाद अपना दिमाग खाली करके सोने से आपको नींद भी अच्छी आएगी और साथ में रोज का हाल चाल देने से दूसरे दिन याद रहते हैं कि बाबा को हमने अपना कहा है, तो वो स्मृति सहयोग देती। धर्म राजपुरी के लिए जाना नहीं पड़ेगा, दे दिया ना और परिवर्तन कर लिया तो धर्म राजपुरी से बच जाएंगे। अभी दूसरे वर्ष देखा तो किसने नहीं है, लेकिन अभी लक्ष्य रखो, वर्ष को छोड़ो, कम से कम जितने थोड़े समय में अपने को जो बाप की आश है कि चेहरा दिखाई दे, झलक दिखाई दे, वो जल्दी से जल्दी प्रैक्टिकल में करके देखो।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा हर बच्चे को बेफिक्र बच्चा

Yes.

Bye.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: हर बोल में पवित्रता का वाइब्रेशन समाया हुआ, हर संकल्प में
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: अगर कोई व्यर्थ वा विकारी सोपन लगाओ का सोपन आता है पर कई

Peace.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

se ahorcar, ¿me entendieron?

Anna.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: समय से अचानक की वार्निंग

एक स्वमान देते हैं। हर बच्चा दृढ़ संकल्प धारी विशेष आत्मा बनो। संकल्प किया इसको कहा जाता है दृढ़ संकल्प। कहते हैं दृढ़ संकल्प किया लेकिन दृढ़ता माना ही सफलता। अगर सफलता नहीं है तो दृढ़ता नहीं कहेंगे। तो अभी दृढ़ता रोज अमृत वेले सिमट

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: मन में बहुत कुछ आपके भरा हुआ है। बाप दादा के पास मन को देखने का टीवी भी है। यहाँ ये टीवी तो सिर्फ पैर का शिकल दिखाते हैं ना, लेकिन बाप दादा के पास हर एक के हर समय के मन के गति का यंत्र है। तो मन में बहुत कुछ दिखाई देता है। जब मन का टीवी देखते तो खुश हो जाते हैं, बहुत खजाने हैं, बहुत शक्तियां हैं, लेकिन कर्म में यथाशक्ति हो जाते हैं। अभी कर्म तक लाओ, वाणी तक लाओ, चेहरे तक चलन में लाओ, तभी सभी कहेंगे। जो आपका एक गीत है ना, शक्तियां आ गई, सब शिव की शक्तियां है, पांडव भी शक्तियां हो। बच्चों को इस समय बाप दादा के आशाओं को पूर्ण करने वाले आशाओं के सितारे देख रहे हैं। कोई भी बात आवे ये स्लोगन याद रखना, परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा चाहते हैं एक एक बच्चा ऐसा खुश खुश नसीब दिखाई दे, चेहरे से चलन से क्योंकि समय पर
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अभी सेवा और स्व दोनों का बैलेंस ऐसा सेवा स्थान बनाओ जो सबके आगे एक एग्जाम्पल हो। जैसे म्यूजियम होता है ना, तो सब एड्रेस देते हैं ना, शहर में कहाँ भी जाओ तो एड्रेस देते हैं, यहाँ जाओ यहाँ जाओ। ऐसे जिसको शांति चाहिए, हिम्मत चाहिए, वो मगुस्सा चाहिए, वो आपके एड्रेस में पहुंचे, फैल जावे। अगर शांति का वाइब्रेशन लेना हो तो यहाँ जाओ, अगर हिम्मत पढ़नी हो तो यहाँ जाओ। ऐसे स्पेशल बनाओ, ठीक है ना। बाकी तो सब म्यूजियम तो जाता, अध्यात्मक म्यूजियम भी है, भाषण भी है, सब कुछ है, लेकिन कोई विशेषता ऐसी स्थान की बनाओ जो भ्रमणों में और पैर में भी ये प्रसिद्ध हो जाए कि ये चाहिए तो यहाँ जाओ। क्योंकि आजकल लोगों को सुनने की आदत तो है लेकिन अनुभव करने की आदत नहीं। तो अगर अनुभव करने जाए तो आपके पास ये प्रसिद्ध हो जाए कि अगर आपको अनुभव करना है तो ये एड्रेस।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: ये स्मृति दिवस विशेष सभी बच्चों के Bob.

Attention.

Telefon.

0: asco. Se Martí te basó, San Martí te vas callat. Srap se Martini.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: विश्वमे संतुष्टता की लाइट फैलाओ, संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना
1: संतुष्ट।

channel.

असंतुष्ट का प्रभाव कुछ तो पड़ता है ना। व्यर्थ संकल्प तो चलता है ना। जो पाप दादा ने शुभ भावना शुभ

Nossa.

0: आकर कोई परिवर्तन नहीं होता और आपके अंदर भी उसी आत्मा का प्रभाव पड़ता रहता व्यर्थ संकल्प के रूप में, तो वायुमंडल संकल्प फैलते इसलिए आप न्यारा बन पाप का प्यारा बन उस
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा। सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बदल जाए

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सेवा के साथी पाप तो सकाश देने वाले हैं, लेकिन साथी कौन? साकार का साथ तो परिवार का है। तो पाप ने देखा है कि तीन निश्चय में मेजॉरिटी ठीक चल रही है, लेकिन परिवार के साथ में निभाना, संस्कार मिलाना, एक एक को कल्याण के भावना से देखना और चलना, इसमें कई बच्चे यथाशक्ति बन जाते हैं। लेकिन बाप ने देखा कि जो परिवार के निश्चय में नॉलेज फॉलोगे, सदा बाप समान

0: साखी बन के स्थिति में साथ में आते हैं, रहते हैं। वो ही नंबर वन या नंबर वन डिवीजन में आते हैं। तो चेक करो स्वभाव परिवार में होते हैं। जो भी छोटी छोटी गलतियां होती है विघ्नाती है वो परिवार के संबंध में ही आते हैं। सबसे आवश्यक इस परिवार के संबंध में पास होना आवश्यक है। अगर परिवार में चलने में तोड़ने बहाने में कोई भी कमी होती है तो वो विघ्न छोटा हो या बड़ा हो लेकिन तंग करता है। ये क्यों, ये कैसे परिवार के कनेक्शन में आता है? वो क्यों के बजाय क्यों नहीं करना है? लेकिन हमें मिलकर चलना है, परिवार की प्रीत निभानी। क्यों कि ये बाप का परिवार है, भगवान का परिवार है, रवासी परिवार नहीं। नशा रहना चाहिए कि वाह बाबा, वाह ड्रामा, वाह मैं और वाह परिवार।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सबके दिल में कौन क्या कहेंगे, मेरा बाबा

दिया थे मीठे बाबा मेरे बाबा, हर एक बच्चे के मन से देखो तू कौन समाया हुआ है दिल में। मेरा बाबा हर एक के दिल में, मेरा बाबा।

مشکلات باپ دادا تو سب نے دیکھ رہے ہیں، ہر ایک

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

अभी भी बच्चे तो सेफ है।

0: की सेवा भी कौन करेगा? आप प्रभु के संग में रंग लगे हुए हो तो जो परमात्मा के संग रंग में प्राप्त किया है वो अपने भाई बहनों को, भक्तों को खूब प्यार से, दिल से बांटो।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कोई भी बात आवे, दीपक जगे हुए दीपक के सामने आवे।

0: देखने में आवे साकार सदानंद स्वरूप कहे मुझे जैसे बाप दादा के सामने आते हो तो बाप दादा को जैसा समय उस रूप में देखते ऐसे आप सभी भी ऐसे दिखाई देंगे। साधारण नहीं दिखाई देंगे, साधारण रूप में देवता रूप में या देवी के रूप में दिखाई प्रैक्टिकल वासना आती है, लेकिन सभी ऐसे स्टेज में पहुंची जाए।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा ने आज अमृत वेले चक्कर लगाए, सभी

सबसे बड़ी अथॉरिटी है अनुभव की।

सबसे बड़े थे बड़ी।

воровки. Ан поти мерена. Иски. Сюда некий кошечка.

0: शरत में भी बहुत मदद करते हैं। तो बाप दादा ने देखा अनुभव की अथॉरिटी, इस अनुभव के अथॉरिटी का अभ्यास के ऊपर और अटेंशन दो। अनुभव स्वरूप स्थिति सदा समाई हुई रहती है, उसकी शिकिल चलन सेवा कर।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Mubarak ho।

बच्चे के लिए क्या चाहता है।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

soy Emma.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: I'm

हार के पीछे नहीं सोचो।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: रोज अमृत वेले जी करो, मेरे पुरुषार्थ की गति तीव्र है या चल रहे पहुंची जाएंगे हो ही जाएगा, ऐसे संकल्प तो नहीं रखते। दीवार पुरुषारथी बनो, पुरुषारथी तो है लेकिन चेक करो दीवार पुरुषारथी।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा ने देखा बच्चों ने भिन्न भिन्न प्रकार के कोर्स बनाए अच्छे।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अगर कोई भी थोड़ी किटकिट हो तो अभी चार के पहले घर को ठीक करना, फिर विश्व की सेवा कर सके, ठीक है ना। जिन्होंने नहीं हाथ उठाया वो भी करना। भावना से जवाब नहीं देना, क्रोध नहीं करना, इससे भी फर्क पड़ जाता है। देखो यज्ञ के हिस्ट्री में ऐसे बहुत दृष्टांत है जो मारते थे, मारते है ना, तो बहुत मारने वाले भी माताओं की शुभ भावना से सेवा करने से वो पाप के बच्चे बन गए। तो आप भी सोचेंगे हमारे घर में तो लड़ाई होती है, मारते भी है, ये होता है वो होता है, लेकिन जब कोई बदल सकती है तो आप नहीं बदल सकते हो। शुभ भावना और अपने चलन परिवर्तन हो जाती तो वो भी नरम हो जाती है, गर्म नहीं होते, नरम हो जाते। इसलिए माताएं पहले अपने घरों को, बच्चों को ठीक करो। अच्छा नहीं मानते हैं लेकिन प्यार से चले, गिलानी नहीं करे ज्ञान की, इतना तो हो सकता है ना। चलो क्रोधी है क्या भी है, आदतें खराब है, लेकिन ये तो कहे माता जी बहुत अच्छी, हम ऐसे है, लेकिन माता जी इतना प्रभाव तो बदली होना चाहिए ना। फिर देखो सेवा कितनी फैलती है, ठीक है माता है।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: कई बच्चे कहते हैं कि हम कई बार अनुभव करते हैं कि कभी कभी जब कोई शक्ति चाहती है ना, तो उस समय पर शक्ति नहीं आती। वैसे शक्ति है, लेकिन समय पर कभी शक्ति को इमर्ज करते हैं ना, तो भी नहीं आती। है मास्टर सर्वशक्तिमान, टाइटल क्या है आपका? मास्टर सर्वशक्ति। मास्टर सर्वशक्तिमान के सीट पर सीट नहीं होते। अभी दफ्तर में भी जाओ तो जो अथॉरिटी करने वाले को होगी वो ऑर्डर करेगा, तो मानते हैं ना। ऐसे दूसरा कोई कहे तो मानेंगे क्या? तो आपकी सीट है मास्टर सर्वशक्तिमान, उस सीट पर सीट नहीं होते। तो आह्वान करते भी शक्ति समय पर नहीं आती। इसके लिए बाप दादा ने बार बार कहा है, अपने मन को बिजी रखो, कभी किस शक्ति को सारे दिन में इमर्ज रखो, कभी किसी शक्ति को इमर्ज करके देखो कि उसकी ताकत क्या है। ऐसे अनुभव करते रहेंगे अपने सीट पर से,
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: दिल में चंदा तो लहरा लिया और कमरे का चंदा भी लहरा लिया जगह जगह पर। अभी पार्थक्यता का चंदा जल्दी से जल्दी लहराना ही है। यही फिर तलो दृढ़ प्रतिज्ञा का फिर तलो के जल्दी से जल्दी ये चंदा नाम बाला का लहराना ही है। अभी तो की दुनिया को मुक्ति धाम में, जीवन मुक्ति धाम में भेजो। बहुत दुखी है ना तो रहम करो। अब तो कसे चुरा सबको दिलाओ, क्योंकि परेशान बहुत है। आप शान में हो वो परेशान,
4: परेशान आत्माओं को आप शान में लाओ।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: हाथ इसीलिए उठाते हैं, अभी जैसे एक दो को देख करके हाथ उठाने में उमंग आता है ना। ऐसे जब भी कोई समस्या आवे तो सामने बाप दादा को देखना, दिल से कहना बाबा, और बाबा हासिल हो जाएगा, समस्या खत्म। समस्या सामने से हट जाएगी और बाप दादा सामने हाजिर हो जाए। मास्टर सर्वशक्तिवान अपना टाइटल हर समय याद करो, मास्टर सर्वशक्तिवान है। तो मास्टर सर्वशक्ति क्या नहीं कर सकते हैं, सिर्फ अपना टाइटल और कर्तव्य याद रखो। टाइटल है मास्टर सर्वशक्तिवान और कर्तव्य विश्व कल्याणकारी। तो सदा अपना टाइटल और कर्तव्य याद करने से शक्तियां इमर्ज हो जाएंगे। मास्टर बनो, शक्तियों के भी मास्टर बनो, आर्डर करो। हर शक्ति को समय पर आर्डर करो, वैसे शक्तियां धारण करते भी हो, है भी, लेकिन सब कमी ये हो जाती है कि समय पर यूज नहीं। समय बीतने के बाद याद आता है, ऐसे करते तो बहुत अच्छा होता। अब अभ्यास करो, जो शक्तियां समाई हुई है उसको समय पर यूज करो। जैसे इस कर्म इंद्रियों को आर्डर से चलाते हो ना, हाथ को पांव को चलाते हो ना, ऐसे हर शक्ति को आर्डर से चलाओ, कार्य में लगाओ। आके रखते हो, कार्य में कम लगाते हो। समय पर कार्य में लगाने से शक्ति अपना कार्य जरूर करे।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: तो आज से सारे दिन में बार बार कंसीडर करेंगे, शरीर ये

0: say beach beach में सारे दिन में कैसे भी एक मिनट निकाल इस अभ्यास को
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: कोई कोई बच्ची कहती है, बाप ने तो सर्वशक्तियां दी, लेकिन कोई कोई समय जिस शक्ति की आवश्यकता होती है वो थोड़ा टाइम के बाद आती है, बात पूरी हो जाती है फिर आती। इसका कारण क्या? फिर भी समय पर नहीं आती है, उसका कारण क्या? अब बनने मास्टर सर्वशक्तिवान के करते हो।

ist

Amen.

0: Stay powerful. Swapan Dadi Ban. चल रहे
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सभी दिल से विश्व सेवा प्रेत झंडा लहराने वाले बच्चों को बाप दादा का बहुत बहुत बहुत बहुत पदम पदम

0: Af que tot el bé se va perdre. De la rama, haré que del gat de la rama. Orgé del que de la rama se sada a prat vele mubarak le de rena aur charo aur mubarak de de rena ye to logo ko seva ke arth jahan tahan jhanda lehrati hai to unke dil mein bhi smriti aave मेरा बाप कौन पहचानते नहीं है ना तो उनको पहचान के लिए झंडा लहराती है बाकी आपके तो दिल में स्वयं बाप बैठे इसका यादगार या सभी को पदम पदम पदम खुना मुबारक है मुबारक है।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: ஐயே, கால் பண்ணீங்க. அச்சா
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Turn up. प्रभाव डालते हो तो आप किसी वाले

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಾಲಬೋಧ ಶಮಕಾಕತ ದೂಸರ ಸಂತುಷ್ಟ

Monster.

小猫。

Sad.

Sarva Kasanoko. Chamakarniki. Chabiel.

Chap.

Chamito es nada, sabe qué pasa.

Oh.

ist

0: निश्चित अनुभव करेगा।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम। सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: ये फ्रिश्ते पर

लो और सामने आत्मा रूप को लो। मैं शब्द ऐसे नहीं बोलूं, मैं आत्मा ये नेचुरल स्मृति में लाओ। मैं शब्द के पीछे आत्मा लगा दूं, मैं आत्मा। जब मेरा शब्द बोलते हो पहले को मेरा भाव

0: we rush up the bola. Baba samne. Main shabd bola. Atma samne. Ye nature aur natural bana.
1: Sunte rahiye Shiva Radio. यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: मधुबन निवासी अर्थात गरम में मधुरता और वृत्ति में समझो विजय दासी बनना, अर्थात अनेक गिफ्ट के अधिकारी बनना। देखो स्थूल गिफ्ट भी बहुत मिलती है ना मधुबन को।
3: जाएंगे तो
2: और कितना सामान मिलता है अगर मधुबन वाला कहाँ भी जाता है तो किस नजर से सभी देखते हैं।
3: मतलब
2: मधुबन वाला है, मधुबन वाला है। तो इतना अपना सामान सदा
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Steve.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

しい。

इस कभी कभी।

Freak.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: आज बाप दादा अपने दिल की विशेष आशा सुना रहे हैं। बाप दादा की सभी बच्चों के प्रति, एक एक बच्चे के प्रति, चाहे देश चाहे विदेश में, चाहे सहयोगी है, क्योंकि सहयोगी भी परिचय तो मिला है ना, परिचय मिला है तो प्राप्ति तो करनी चाहिए ना परिचय से। तो यही बाप दादा की आशा है कि हर बच्चा
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा ने एक बारी सभी सेंटर्स का चक्कर लगाया, पता है क्या देखा? कभी स्टॉप लगाना पड़ेगा।

दूसरों की बातें याद करते, ये क्यों होता, ये क्या होता, इसमें आश्चर्य की मात्रा लगा जाती, तो फुल स्टॉप नहीं लगता। लेकिन कमा आश्चर्य आश्चर्य की निशानी, और क्यों क्वेश्चन कि क्यों लग जाती। तो इसको चेक करना, अगर फुल स्टॉप लगाने की आदत नहीं होगी check।

0: stop. Seeker mein lagane ka. Baar baar abhyas karo. Abhi fast deeper pusher. डाला पुरुषार्थ सफलता नहीं दिला सके।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: श्रेष्ठ शुद्ध संकल्प में इतनी ताकत है जो आपकी कैचिंग पावर, वाइब्रेशन, कैच करने की पावर बहुत बढ़ सकती है। ये वायरलेस, ये टेलीफोन, जैसे ये साइंस का साधन कार्य करती है, वैसे ये शुद्ध संकल्प का खजाना ऐसा ही कार्य करेगी। जो लंदन में बैठे हुए कोई भी आत्मा का वाइब्रेशन आपको ऐसे ही स्पष्ट कैच होगा, जैसे ये वायरलेस या टेलीफोन, ये टीपी, ये जो भी साधन है, कितने साधन निकल गए, इससे भी स्पष्ट आपकी कैचिंग पावर, एकाग्रता की शक्ति से बढ़ेगी। ये आधार खत्म हो नहीं है, ये सब साधन किस आधार पर है? लाइट, जो भी सुख के साधन है, मेजॉरिटी लाइट के आधार पर। तो क्या आपकी आध्यात्मिक लाइट, आत्म लाइट ये कार्य नहीं कर सकती? जो चाहो वाइब्रेशन नजदीक के, दूर के कैच कर सके। अभी क्या है, be

0: कंबल की बड़ी मेहमान, ये रिद्धि सिद्धि वाले भी मनोबल द्वारा अलग काल के चमत्कार दिखाते। आप तो विधि पूर्वक रिद्धि सिद्धि नहीं, विधि पूर्वक कल्याण के चमत्कार दिखाएंगे। जो वरदान हो जाएंगे आत्माओं के लिए, ये संकल्प शक्ति का प्रयोग वरदान से तो हो जाएगा। आकर आपकी संकल्प की शक्ति इतनी महान हो जाएगी जो सेवा में मुख द्वारा संदेश देने में समय भी लगाते हो, संपत्ति भी लगाते हो, हलचल में भी आते हो, थकते भी हो, लेकिन श्रेष्ठ संकल्प के सेवा में ये सब बच जाएगा। बढ़ाओ इस संकल्प शक्ति के बढ़ाने से प्रत्यक्षता भी चलती होगी।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: जैसे फरिश्ता रो

some good luck Brahma Bab Saman Banana Arthat Frishta Banana Shiv Bab Saman Banana Arthat Nirakar Sthiti Me से प्यार है ना जिससे प्यार है उस जैसा बनना जब संग

0: साधारण जीवन नहीं, साधारण जीवन जीने वाले बहुत है, बड़े बड़े कार्य करने वाले बहुत है, लेकिन आप जैसा कार्य आप ब्रह्मांड आत्माओं के सिवा
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

चखियां थक गई पंथ निहार आ जा रे।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: 5G.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: पाप को सबसे बढ़िया चीज लगती है सच्चाई, इसलिए भक्ति में भी कहती है God is truth। सबसे प्यारी चीज सच्चाई, क्यों जिसमें सच्चाई होती है ना उसमें सफाई रहती है। Sure।

सबको सच्चाई अच्छी लगती है ना, जिसमें सच्चाई होगी ना उसको बाप को याद करना बहुत सहज होगा। क्यों? बाप भी सच्चा

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: वर्तमान समय और स्वयं के पुरुषार्थ परमान अभी you

es algo que

Você.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कई बच्चे समझते हैं बाप दादा से तो संबंध है, परिवार में हुआ नहीं हुआ क्या बात है, बीच से तो है, लेकिन आपको विश्व का राज करना है ना, और राज में उस संबंध में आना ही होगा, इसलिए संबंध संपर्क में आना ही है, लेकिन संबंध संपर्क में यथारथ खजाना मिलता है, बिना संबंध संपर्क के आपको दुआओं का खजाना जमा नहीं होगा। माँ बाप की दुआएं तो है, लेकिन संबंध संपर्क में भी दुआएं लेनी है। अगर दुआएं नहीं मिलती, अगर दुआएं नहीं मिलती, फीलिंग नहीं आती, तो समझो संबंध संपर्क में कोई कमी है। यथारथ रीत आकार समान संपर्क है तो दुआओं की अनुभूति होनी चाहिए। और दुआओं की अनुभूति क्या होगी? अनुभवी तो होना, आकर सेवा से दुआएं मिलती है तो स्वयं भी हल्का रहेगा, और जिसके संपर्क में आए बाजा ठीक चलाना तो है ना, दुआएं मिलने का अनुभव यही होगा, जो स्वयं भी संबंध में आते कार्य करते लाइट होगा, हल्का बोझ नहीं महसूस करेंगे, और जिनकी सेवा की समान संपर्क में आए वो भी डबल लाइट फील करेंगे, अनुभव करेगा कि ये संबंध में सदा हल्का अर्थात इसी है, भारी नहीं रहेगा। संबंध में आओ न जैसी कहावत है ज्यादा मीठे पार चीटियां बहुत आती हैं। इतना इसी भी नहीं, लेकिन डबल लाइट रहेगी।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: संगठन सभी जगह मजबूत करो, चाहे दो है चाहे चार है चाहे बारह है, लेकिन तो काफी संगठन ऐसा मजबूत हो जो दोनों एक मत हो। स्वभाव एक दो में श्रेष्ठ बनाए मिलाने की कोशिश कर, जैसे दादी को याद करते हैं ना, क्यों याद करते हो, उसकी विशेषता सबको अपनापन दिया है ना, ऐसे सभी को अपनापन दिया ना, तो क्यों आप सभी नहीं कर सकते हो। जैसे सभी ने अनुभव किया हमारी दादी है, ऐसे नहीं मधुबन की दादी है, हमारी है। ऐसे सभी ब्राह्मण एक दो में अपनापन अनुभव कर, इसी को याद करना, इसी को याद कहा जाता है समान बनना, विशेषता धारण करना, इसको कहते हैं याद। ठीक है ना, हर एक यही सोचो सब अपने अपनापन महसूस हो, ऐसे नहीं ये तो पता नहीं कौन है क्या है, एक परिवार है ना, दादी भी सभी सेंटर पर तो नहीं रहती थी ना, एक ही स्थान पर रहती थी मधुबन में, लेकिन सभी को अपनापन दिया, तो आप सभी भी अपने अपने स्थान पर रहते फिर भी अपनापन दे सकते।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अभी सभी बच्चों

Yeah.

Jeho zde.

口。

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: अब छोटी छोटी बातों में टाइम नहीं लगा। जैसे देखो मक्खी आती है, मच्छर आते हैं, ठहरने देते हो, फौरन उड़ा देते कि बैठने देंगे। अच्छा मच्छर पले आओ, कोई भी समस्या क्या है मच्छर और मक्खी

0: करो, मेरा काम भगाना है, वो भी आपको सिखलाती है कि मैं आना नहीं छोड़ूंगी, आप विजय पाना नहीं छोड़ो। तो क्या अभी छोटे छोटे मच्छर और मक्खी को आने नहीं देना? संपूर्ण स्थिति के आगे ये छोटी छोटी चीजें क्या है?
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: bạn kìm em à. Comment channel à Arta Suyam Kumahan Banana.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: Jason's gone. Chip J. Jesse J. Rolling power or controlling power.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आजकल तो मेरे मेरे में एरिया का झमेला ज्यादा हो गया। मेरी एरिया विश्व कल्याणकारी

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

Hassan.

मुस्कुराता है जब कह रहे हो मेरे संस्कार। तुम मेरा बनाए है, तुम मेरे का द्वादकार होते ही है। जब पुराने संस्कार को मेरा बना दिया संस्कार मेरा।

मेरा नहीं कह सकते। जीवन के संस्कार शूद्र जीवन के संस्कार।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: झमेला मुक्त होने की विधि सबसे सहज है कि पहले स्वयं को झमेले मुक्त कर दूसरे के पीछे नहीं पड़ो। ये स्टूडेंट ऐसा है, ये साथी ऐसा है, ये सरकमस्टेंस ऐसी है, उसको नहीं देखो लेकिन अपने को झमेला मुक्त करो। जहाँ झमेला होना वहाँ अपने मन को देखो। आप सोचते हो ये झमेला पूरा होगा ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा, हमारी सेवा भी अच्छी, हमारी अवस्था भी अच्छी। लेकिन झमेले बाहर के समान है क्या? बाहर से मात्र टकराना है, ठीक ना क्या? स्वयं किनारा कर लो या उड़ती कला से उस झमेले के बाहर के भी ऊपर चले तो बाहर भी आपको एकदम सहज अनुभव। मुझे बनना है अमृत वेले से, ये स्वयं से संकल्प करो कि मुझे झमेला मुक्त बनना है। बाकी है झमेल की दुनिया, झमेले तो आएंगे, आपकी दुनिया आपका सेवा केंद्र है तो आपकी दुनिया ही वो है तो वही आएंगे ना। आप अमेरिका या लंदन जाएंगे क्या पेपर देने के लिए? सिंटर झमेला नहीं आवे ये नहीं सोच, झमेला मुक्त बनना है ये सोच।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा ने देखा कि सेवा व कर्म और स्व पुरुषार्थ अर्थात योग तो दोनों का बैलेंस रखने के लिए विशेष एक ही शब्द याद रखो, वो कौन सा? पाप करावन हार है और मैं आत्मा, मैं फलानी बहुत सहज बनेगा। स्वपुरुषार्थ का बैलेंस या गति कभी भी कम होती है, उसका कारण क्या? कारण हार के बजाय मैं करने वाली या वाला हूं। करण हार के बजाय अपने को करावन हार मैं कर रहा, जो भी जिस प्रकार की भी माया आती है उसका गेट कौन सा है? माया का सबसे अच्छा सहज गेट जानते तो ही मैं तो ये गेट अभी पूरा बंद नहीं किया। ऐसा बंद करते हो जो माया सहज खोल लेती और आ जाती। अगर करण हार तो कराने वाला अवश्य

0: और दूसरा मैं आत्मा भी इन कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाली हूँ। इससे क्या होगा कि कर्म करते भी कर्म के अच्छे या बुरे प्रभाव में नहीं है। इसको कहते हैं कर्मातीत अवस्था।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

बन सकते।

Abi. Second me. Jump.

व्यापार संसार है। दूसरा न कोई, इससे एकाग्र स्मृति

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Percentage yoga keys.

0: जीवन में परवाह, इसलिए चमक का खाता कोई कोई समय का जमा होता है, लेकिन
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: वर्तमान समय

Come.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कुछ भी सेवा करो, चाहे जिज्ञासु कोर्स वाले आवे या नहीं आवे, लेकिन स्वयं से संतुष्ट रहो, निश्चय रखो कि अगर मैं संतुष्ट हूं तो आज नहीं तो कल ये मैसेज काम करेगा, करना ही है। इसमें थोड़ा सा उदास नहीं बना, खर्चा तो किया, प्रोग्राम भी किया, लेकिन आया कोई नहीं, स्टूडेंट्स नहीं पढ़े, कोई अड़चन नहीं, आपने तो किया ना, आपके हिसाब किताब में जमाओ और उन्हों को भी संदेश मिल गया तो टाइम सभी को आना ही है, इसलिए करते जाओ। खर्चा बहुत हुआ उसको नहीं सोचो, स्वयं संतुष्ट हो तो खर्चा सफल हुआ। घबराओ नहीं, पता नहीं क्या हुआ, कई बच्चे ऐसे होते कहते हैं मेरा योग ठीक नहीं था तभी ये हुआ, किसे योग था और कोई है क्या जिसे योग है और सदा रहेगा, बाकी कोई सीजन का फल है, कोई हर समय का फल है।

0: क्या दाम करके आपके पाँव पर पड़ी। जब हमने कहा हमने नहीं माना, यही आप दिव्या बनेंगे, आपके पाँव पर पड़ेंगे। कभी तो भक्ति में भी पाँव पड़ेंगे, तो वो टाइम भी आना है जो सब आपके पाँव पड़ेंगे। जो आपने कितना अच्छा हमारा कल्याण किया।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: औरों की सेवा की बहुत बहुत बहुत बहुत आवश्यकता है। ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत नासिक समय आना है। ऐसे जैसे आप ही अनुभव करती है ना, पानी मिल गया, बहुत प्यास मिटी, खाना मिल गया, टेंट मिल गया, सारा मिल गया। ऐसे अनुभव करेंगे,
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बहुत दुखी है, बाप दादा को अभी इतना दुख देखा नहीं जाता। पहले तो आप शक्तियों को देवता रूप पांडवों को रह माना चाहिए। कितना पुकारे अभी आवाज, पुकार का आपके कानों में गूंजना चाहिए। समय के पुकार का प्रोग्राम करते हो ना, अभी भक्तों की पुकार भी सुनो, दुखियों की पुकार भी सुनो। अभी थोड़ी थोड़ी पुकार सुना तो सही, बेचारे बहुत पुकार रहे, जिगर से पुकार रहे, तरफ रहे। साइंस वाले भी बहुत चिल्ला रहे हैं, कब करे कब करे कब करे, पुकारे। आपका गीत है दुखियों पर कुछ रहम करो। स्वयं आपके कोई रहम नहीं कर सकता। सागर बना

Ausfallen. Bena Leitski.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: ये भाषा नहीं कहना, ये ऐसा किया ना, तभी ऐसा करना पड़ा। सने के वजह थोड़ा थोड़ा थोड़ा कहना पड़ा, बाबा शब्द नहीं बोलता, ये करना ही पड़ता है, कहना ही पड़ता है, देखना ही पड़ता है। ये नहीं, इतने वर्षों में देख लिया, बाप दादा ने छुट्टी दे दी, ऐसा नहीं वैसा करते रहे, लेकिन अभी कब तक बाप दादा से सभी रोहरियान में मेजॉरिटी कहते हैं बाबा। आकर भी पर्दा कब खोलेंगे, कब तक चलेगा? तो बाप दादा आपको कहते हैं कि ये पुरानी भाषा, पुरानी चाल, अलबेलेपन पन की। कब तक? बाप दादा का भी क्वेश्चन है, कब तक? आप उतर दो तो बाप दादा भी उतर देगा, कब तक विनाश होगा? क्योंकि बाप दादा विनाश का पर्दा तो अभी भी खोल सकते हैं इस सेकंड, लेकिन पहले राज करने वाले तो तैयार हो, अब से तैयारी करेंगे तब समापति समय बुलाएंगे। किसी भी कमजोरी के बाद में कारण नहीं बताओ, निवारण करो। ये कारण था ना, बाप दादा सारे दिन में बच्चों का खेल तो देखते हैं ना, प्यार है ना बच्चों से, तो बार बार खेल देखते रहते हैं। बाप दादा की टीवी बहुत बड़ी है, एक समय पर वर्ल्ड दिखाई दे सकती है, चारों ओर के बच्चे दिखाई दे सकते, चाहे अमेरिका हो चाहे गुरुगांव हो, सब दिखाई देते। तो बाप दादा खेल बहुत देखते हैं, डालने की भाषा बहुत अच्छी है। ये कारण था ना, बाबा मेरी गलती नहीं है, ऐसा किया ना, उसने तो किया, लेकिन आपने समाधान किया, कारण को कारण नहीं बनने दिया, या कारण को निवारण में बदली किया। तो सभी पूछते हैं ना बाबा आपकी क्या आशा है, तो आज बाप दादा आशा सुना रहे। बाप दादा की एक ही आशा है, निवारण दिखाई देवे, कारण खत्म हो जाए, समस्या समाप्त हो जाए, समाधान होता रहे।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: पाप और बच्चों का एक दिवस जन्म, यही वंडर है। तो आज आप सभी सालिग्राम बच्चे को मुबारक देने आई हो, आप आपसे मुबारक लेने आई हो। देने भी आई हो, लेने भी आई हो।

अभी कुछ नहीं कर सकता, इसीलिए ब्रह्मा बाप का आधार लिया। आप ब्राह्मणों को रचने के लिए स्वयं ब्राह्मणों के बाप भी कुछ नहीं कर सकते। Yes.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: शॉट इकट्ठा इसीलिए किया जाता है कि एक दो के नजदीक होने के कारण एक दो को सहयोग देना सहज हो जाता है। तो ये भी सहयोगी बनना मेरी एरिया नहीं, सब मेरी आवश्यकता जहाँ है वो मेरा, चाहे सोन नाम अलग अलग है, लेकिन जहाँ आवश्यकता है, आवश्यकता के समय सहयोग देना ये महापुण्य है। अगर अपना पुण्य का खाता जमा करना है तो सहयोगी बनो और सेवा को और चांद लगाओ, ये बाप दादा को अचल। तो इस संगठन को बढ़ाते रहना, बढ़ाते रहेंगे ना, हाथ उठाओ, बढ़ाएंगे ना, सभी सभी ने उठाया, हम सब एक है। ये तो सेवा के कारण कोई देख रेख हो सके इसके कारण जोन बने, बाकी एक ही है, एक ही रहेंगे, एक के है, एक के नहीं।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: शिव के ऊपर अक के फूली चढ़ते तो आज शिवरात्रि मना रहे हो, शिव का जन्मदिन मना रहे तो ये क्रोध का अक का फूल देख रही है दादिया, देख।

0: हिम्मत कभी नहीं हार। अगर थोड़ा भी कम हुआ तो आगे के लिए हिम्मत रख के छोड़ नहीं देना, पढ़ते रहना। बाप दादा कंबाइंड है कहते हो ना, साथ है नहीं कहते हो, कंबाइंड। ऐसे समय पर अगर कुछ भी हो, बाप दादा कंबाइंड है, उसको सामने लाके फिर अर्पण कर दो। लेकिन बाप दादा चाहते हैं कि सभी बच्चे नंबर वन हो। दी हुई चीज अमानत हो गई। हाथ उठाया अर्थात दिया तो अभी आपका नहीं हुआ, अमानत है। तो अगर संकल्प में भी आए तो समझना अमानत में ख्यानत है, ये बुरा माना जाता है। दी हुई चीज कभी वापस नहीं ली जाती, क्योंकि मेरी नहीं।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अगर पापा शब्द नहीं निकलता तो ज्ञान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Happy.

tiba.

Fascista. Tigbireye. Or tigre jai debi. Koi koi bachoga. इस बात के ऊपर अच्छा ध्यान है क्योंकि अभी आप निमित्त बने हुए बच्चे Dang.

Ocean.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: सभी बच्चे

Eli.

Chapter.

0: अब समान बच्चों को नमस्ते करेगा, झुकेगा। आप ऐसे
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: खुशियों की। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कोई आपसे पूछे परमात्मा कहाँ है तो क्या जवाब देंगे? मेरे साथ है, मेरे साथ ही रहते हैं, ऐसा अनुभव कर रहे हो ना? आप भी जानते हो और आप कोई इस प्यार का अनुभव है कि हमारे दिल में पाप रहते और बाप के दिल में अमृत। जानते हो कि ये परमात्मा प्यार का नशा हमें ही अनुभव करने का भाग्य प्राप्त हुआ।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: परिवार में भी निश्चय अति आवश्यक है, क्योंकि बड़ी इतना बड़ी परिवार विश्व में किसका है। आप जितना परिवार चेक करो विश्व में किसका है। परिवार के रीति से किसी भी डिवाइन फादर का भी नहीं। वाह, फॉलोअर या परिवार, परिवार के साथ ही सेवा में संबंध में रहते हो। ऐसे नहीं कि हमारा तो बाप से कनेक्शन है, परिवार से नहीं हुआ तो क्या हुआ। परिवार का निश्चय तो आपका जन्म चलना है, जानते हो ना। परिवार के साथ ही संबंध में आने से मालूम होता है कि मैं इतने बड़े परिवार में सभी से निश्चय बुद्धि हो चल रही है। परिवार में चलने के लिए ये अटेंशन देना पड़ता है कि परिवार में हर एक के संस्कार भिन्न भिन्न संस्कार। तो इतने बड़े परिवार में चलते संस्कारों को समझ एक दो में एक परिवार एक बाप एक राज तो एक हो के चलना है। परिवार में जैसे बड़ा परिवार है ऐसे ही एक दो में बड़ी दिल हर एक के प्रति शुभ भावना शुभ कामना स्थिति में स्थित हो चलना है। क्योंकि परिवार के बीच ही संस्कार स्वभाव आता है, लेकिन कोई समझे परिवार से क्या है, बाबा से तो है। लेकिन यहाँ धर्म और राज दोनों की स्थापना सिर्फ धर्म नहीं है, दूसरे जो भी धर्म पिता है उनका सिर्फ धर्म है, राज नहीं है। या तो आप सबको राज भी करना है, तो राज में परिवार की आवश्यकता होती, और 21 जन्म परिवार को छोड़ कहाँ जा नहीं।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: शिवा जो स्वयं को व दूसरे को डिस्टर्ब करे वो सेवा नहीं, वो स्वार्थ है सेवा नहीं। और नीचे ऊपर होती है निमित्त कोई न कोई स्वार्थ होता है, चाहे अपना चाहे दूसरे का स्वार्थ पूरा नहीं होता है। तब सेवा में डिस्टर्बन होती सभी एकदम न्यारी और प्यारी बन करती, स्वार्थ से न्यारी और सर्व के संबंध में प्यारी, चारों और
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: Shadow.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: शुभ भावना, शुभ कामना ऐसी शक्तिशाली है जो बीच में सिर्फ वाय नहीं आवे, स्वयं शुभ भावना शुभ कामना के तो इतने पावरफुल है जो किसी अशुभ भावना वाले को भी शुभ भावना में बदल सकते हो। अच्छा बदल नहीं सकते हो। सेकंड नंबर, अगर आपकी शुभ भावना शुभ कामना अविनाशी है, कभी कभी वाली नहीं अविनाशी है, तो आपके ऊपर अशुभ भावना का प्रभाव नहीं पड़ सकता। क्वेश्चन में चले जाते हो, ये क्यों हो रहा है, ये कब तक चलेगा, कैसे चलेगा। इससे शुभ भावना की शक्ति कम हो जाती, नहीं तो शुभ भावना शुभ कामना इस संकल्प शक्ति में भी आए।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: पवित्र संकल्प करो, संस्कार कट करो, स्वभाव का मत भेदो। तीसरी बात कमजोर होने की होती है, कोई ने किसी के ऊपर झूठी बात कह दी तो कई बच्चे कहते हैं हमको ज्यादा क्रोध आता है झूठ पर। लेकिन सच्चे बाप से वेरीफाई कराया

0: को हिला नहीं सकता क्योंकि बाप आपके साथ। कह रही है झूठ है तो झूठ को झूठी कर दो ना, बढ़ाते क्यों। तो आज बाप को बहाने बाजी अच्छी नहीं लगती। ये हुआ ये हुआ ये हुआ ये का कीर्तन समाप्त होना चाहिए। अच्छा हुआ, अच्छा होगा, अच्छा रहेंगे, अच्छा सबको बनाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा का गीत गाओ।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Oh shit.

0: joke. Bad job, bad. Just happy. Dunya mein. Ye. Bas to ho gayi hai. Ke vastav mein.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

परिवर्तन का कार्य। Combined रहते हो ना।

0: और पाप बच्चों का देखा है।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: अभी वर्तमान समय के हिसाब से See.

Rússia.

0: सवाली करेगा।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: कर दीजिए। सुते बनाते।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आज सम्राट बाप अपने समृद्धि स्वरूप सम्राट स्वरूप बच्चों से मिलने के लिए आए। आज विशेष चारों ओर के बच्चों में सने की लहर लहरा रही है। विशेष
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Bishop. मेरे को तेरे में बदल दिया तो आप क्या हो गए? आप हो गए बेफिक्र बादशाह। ये बेफिक्र बादशाह

के हर एक बच्चा

Fake.